0: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवावला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
0: चला, इतना बढ़िया सोच तुहार रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
2: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
3: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
4: म सानै उमेरमा बेचिए, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर। तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ। यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
5: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे। झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति। जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु। दिदी,
6: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु।
7: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल, ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
8: ला, सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
7: ल ल, केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
8: हजुर, वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
9: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205510, मोबाइल 9857080510।
10: स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको अनुरोध। भोटे कोशी नदीमा आएको बाढीको कारण मानव तथा पशुको मृत्यु भई नराणी नदीको तटीय क्षेत्रमा भेटिएका शवको व्यवस्थापनका क्रममा पानीका मुहान तथा खाने पानी दूषित भई पखाला, हैजा, टाइफाइड लगायतका रोग फैलिन सक्ने भएकोले पानी शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउने गरौं। पानीमा भिजेका, बिग्रिएका, शंकास्पद खानेकुरा नखाऊ। बाढीमा बगेर आएका माछा, जलचर सेवन नगरौ। ताजा र स्वास्थ्यकर खाना मात्र खाऊ। साथै खाना पकाउनु अघि, खाना खानु अघि र शौचालय गएपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धोऊ। झाडा पखाला, बान्ता, ज्वरो आएमा तुरन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई चेक जाँच अनिवार्य गराऊ। घर वरिपरि पानी जम्न नदेऊ र लामखुट्टेको टोकाईबाट बचौ। स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
11: ओ माय गॉड, ई त अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा ता फिर पड़क गइल।
1: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए ते सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
3: जी, हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगायत के टायर, ट्यूब, रीम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
2: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918510981।
12: सुनत बाड़ा हो, हाय, टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
1: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
10: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
13: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
12: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559574700 और 9559544536।
14: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम नवलपरासीको पहिलो रेडियो, सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: सितारों की मस्ती, संगीत के नशा,
2: आपके नचाए झुमाए वाला गीत।
3: बुलेट पहुँचीजा, बुलेट पहुँचीजा, चले घुमावे बुलेट पहुँचे,
2: आपके दिल बहलाए वाला गीत।
4: जो हस हस के सनम मुझसे बात करती है,
5: फरक दिन फरक प्रस्तुति।
1: जी हाँ संगनिए, भोजपुरी गीत संगीत के अनुपम उपहार।
6: सुने के न भुलायल जे कार्यक्रम गीत बहार।

बैठे पहले संपूर्ण में नमस्ते नमस्कार आप लोगों के बीच में मन के उपस्थित हो चुकल बानी जहाँ मन के सहकर्मी संगत शंभु चौधरी जी बाने और हम भी कार्यक्रम संचालक सुरेश यादव उपस्थित हो चुकल बानी तो मन के आज सुख के दिन बानी जा आज के दिन में मन के आप लोगों के मन पसंद के आपके फरमाइश में गीत सुने खातिर आयल बानी जा और आप डायल कर सकते हैं 9802105 आपके खातिर खुला कर मोबाइल नंबर हमन के प्रार्थिक में बैठ के साथ दे रहा मन के सहकर्मी संगत मन के सुरेश यादव जी आपके खातिर यदि हमन के फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात 90.2 MHz से बाहर बन जाता है मन के ऑनलाइन मार्फत सुन सकल दे जौन के ऑनलाइन बाटे www.radioparasi.com लॉगिन की कोनो भी जगह नंबर की सुन सकल दे फेसबुक पे जाए तो फेसबुक लाइव भी हो रहा बटे रेडियो परासी नेपाली में लिखल बाटे वहाँ से भी सुन सकल दे तो मन के आशा और विश्वास के लिए बन जाए कि आप बिना कोनो माध्यम से सुन के मन के साथ दिया जाता है बिना क्रम में मन के कार्यक्रम के स्वागत स्वरूप आपके खातिर गीत बजाओ जाए आपके खातिर गीत बजते बाद में आप लोगों से बातचीत करे खातिर हमन के उपस्थित होगा कल जाए

0: मान ले नु साथी तुहिन के नानी गाना सुनिन जाने थारो गीत अभिनो देखे प्राविधिक के दुनिया में एकदम एआई कहल जाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एकदम भरमार बटने एआई गाना बहुत अभिनो के निकी निकी आवाज बटने थारो गीत स्वागत शुरू में सुन लीजिए क्रम में फोन लाइन में कोनो संगत याद सुगल बने। हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्कार सर दोनों जन के नमस्कार छोटकी सुरेश सर के भी नमस्कार आपके भी नमस्कार बड़का सुरेश के भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार का बाटा हाल खबर डॉक्टर जी।
1: एकदम ठीक ठाक बा सर आपसे बोले बतिया बहुत खुश है सर।
2: एकदम चल रहा बहुत लंबा समय के बाद भी हम लगभग हफ्ता तीन दिन अब आए लगल बनी आप लोगों के बीच में कार्यक्रम के साथ में।
1: जी जी सर।
2: खान पीन हो गए बा की बाकी बा?
1: खान पीन ना भइल बा सर नाश्ता पानी भइल बा।
0: खान पीन ना भइल बा नाश्ता हो चुकल बाटे ने ड्यूटी में बाड़ी जा काम धाम बढ़िया से चलत हो गल जे ने।
1: जी सर।
0: चल जा कार्यक्रम में रह के कौन गीत सुनल जे?
1: गीत बजा धन जाए छो सुना धन जा आशाओं के पावन में उमंगों के बहार में।
0: आशाओं के सावन में उमंगों के बहार में केतना नी गीत होने सुने के जरूर अच्छा लगबे करी। ये गीत मार्फत अपन साथी संगरिया लोगन के समझ सकल जाए।
1: सबसे पहले आप लोगों के दुलजन के सुरेश सर बड़ बड़की सर के अगरबा में बार हम इनके रेडियो परासी हॉलीवुड के अबार सिकंदर प्रसाद चौधरी नील कुमार चौधरी हरकटोरा जनार्दन प्रसाद चौधरी महेंद्र चौधरी कुद्दी बनिया जी बारद तीनक जी पार्वती जी गोलू हरिजन जी बारद ओम नारायण चौधरी बारद बंदे जिले के तिलोर प्रकाश चौधरी हरौरी से बारद तिपराज चौधरी जितना सुन के साथ देते हुए सर सब दोस्तों के मुफ्त में न सुने वाला सुना सब के मुफ्त में
2: आज दिन में आपके सहभागिता मिली आपके मन पसंद गीत भी हमन के बजाओ छुटल। नमस्ते
1: नमस्कार सर।

0: एकदम कितने गीत सुनी जाए नहीं हमारे डॉक्टर राय जी तिरवलिक संघर्य सहभागिता जना के जा चुके वाने अपन भी मन पसंद के गीत सुने के चाहत बनी है आज सुख के दिनों के 98251 5 डाउ डायल कर जी खट्टा मीठा बात के लिए साथ अपन मन पसंद गीत सुने के सकल जी नहीं आज के दिनों के शुक्रवार फोन लाइन को संघर्य चुके वाने
1: हेलो नमस्कार
2: नमस्ते गुड
0: मॉर्निंग नमस्कार विनोद पंजियार जी के हालचाल का बाटे परसा बीरगंजोर
1: एकदम ठीक बा मौसम उसम आज पानी पड़त रह हल्का बुनियाल भर ढेर ज्यादा नहीं पड़ रहा
2: रात पानी पड़ल सवेरे घाम लागल
0: घाम लगल बाटे घाम ते लगते बाटे थोड़े समय में जाड़ा भी आए लगे नहीं दसई तिहार भी आए लगे कैसे थोड़े दिन में कुछ दिन बाद तीज तिहार आए वाला बाटे चल जा एकदम खान पीन तो हो गए बाटे सहभागिता में आपकी सहभागिता में कौन गीत सुनी मिली ये तो सत्य ये तो सच है कि भगवान है हम साथ साथ हैं फिल्म के गीत हो के नहीं चल गीत मार्फत हम साथ ही संघर्या लगन के समझे सकल जी
2: सर से मिले तो आप दोनों के अपराधी इतने मोल नीट के हम इस संस्था के आदर्श पाना लाल पटेल भौरी कृपा आदर्श योगेंद्र चौधरी परिश्वर बाराम प्रसाद दाजी दादेश शर्मा तो श्री चौधरी हिमाचल चौधरी चानु चौधरी कमसूरी अंसारी केदार चौधरी नरेश कुशवाहा बिंदास नील कुमार चौधरी शेरबाजी चौधरी सवनी चौधरी डॉक्टर राजपीता चौधरी राजीकांत चंद्र प्रसाद चौधरी महेंद्र चौधरी प्रकाश चौधरी चीना कल्याण पार्वती अर्जुन कुटू बानियल धर्मेंद्र पासवान जलानंद चौधरी राजेश्वरी चौधरी हर्षमान चौधरी अनि ओम कुमारी चौधरी और मुन्ना ठाकुर के सुनाते हुए जितना प्रशासन संपूर्ण स्वरत सुनाते नमस्ते
0: नमस्ते नमस्कार हमारे विनोद पंजियार जी परसा बीरगंज से सहभागिता जना के जा चुके और अपन मन पसंद गीत के कहा के भी जा चुके मन उनका गीत जरूर सुनल जी 98251 5 जरूर जरूर डाल

0: हम साथ साथ हैं फिल्म की गीत सुन लीजिए नहीं विनोद पंजियारजी परसा बीरगंज से सहभागिता जना का जा चुकल मैंने मौसम बस सुहाना नहीं के ना बढ़िया गीत बाहर के सुन के साथ दया थोकल जी थे एकदम जरूर सहभागिता जनावल जी और अपन मनपसंद के गीत सुनने के चाहत बढ़िया थे 9821551581 जरूर डायल करल जी फेसबुक से सुनत बढ़िया तुम्हें भी एक नंबर पोस्टर में लिखल बा एकदम 9821551581 इसी क्रम में फोन लाइन में कोनो संगरी आ चुकल बानी।
1: हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: नमस्कार चिरंजीव जी के कार बाल खबर
2: बढ़िया बढ़िया सब ठीक है ठीक है अपन सुना डाला
1: एकदम ओनो के ठीक है बेटा का हो जात बेटा
2: बस काम धाम कई के रेडियो पर आके सुन के बच रही है।
1: खान पीन हो गई?
2: हां खान पीन हो गई सौदा आ गई बस बाजार भैया गांव में तिजारी अब 2 बजे से निकल गई बाजार मार्केट।
1: चलो ल ठीक हुआ। और सुना दादा बेला टाइम और क्या खबर?
2: और कौन है ना फाट फूट टूटी उठी हूँ खिरा था घाम भैल बा गर्मी तो मन बटले बा।
1: चलो ठीक है आपके मन पसंद की कौन गीत सुनेंगे?
2: एल्बम का नाम बा पैसा काम नहीं आई।
0: पैसा
2: गीत भी बोल बा पैसा पैसा गीत भी बोलो पैसा पैसा रटा तड़क करवा का कमाई अब दुनिया से हो जब विदाई पैसा काम नहीं आई।
0: कितना लम्हर गीत बट एक फिर से बता सकल जी चीनक जी।
2: एल्बम का नाम बा पैसा काम नहीं आई और गीत बोल बा पैसा पैसा रटा तड़क करवा का कमाई और दुनिया से हो जब विदाई पैसा काम नहीं आई।
0: एकदम गीत मार्फत अपन साथी संगरिया लगन के समझे सकल जाई।
2: सुभाष राजा के सबसे पहले थे आप दोनों जना के फर्स्ट में आने तिलौली से डॉक्टर राजीव प्रकाश चौधरी जी विनोद पजियार जी आने बाहर से शमसुद्दीन अंसारी जी वानी होम कुमारी चौधरी जी वानी और मंदरिया से ओम नारायण चौधरी मुनगोरिया से मुन्ना ठाकुर विजय से तारा प्रसाद चौधरी जनार्दन चौधरी हरकट्टा से महेंद्र चौधरी वानी दनिया से धर्मेंद्र पासवान आवेनी उनकरा के और जितना दोस्त मित्र कही ना कार्यक्रम सुन रहे सब दोस्त लेके विशेष करके गोली बाबू आना बोसुबास में गोपीगंज में गुड्डू जी बाना गुड्डू बनिया जी और हम तो चिन्ह करके चिन्ह जाना सब दोस्त लोग
1: नमस्ते
2: नमस्ते।
3: आई भैया हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा रुआ सबके हु के दसुनो हजूर के प्रणाम करतनी है भैया हम एगो सामाजिक गाना गावतनी रुआ लोग के बीच में जौना पर रुआ लोग अमल करिए भैया।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शोभा बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45 860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: ल बिहेको अरू तयारी त भयो, अब गर गहना।
1: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
2: बाबा। बाबा गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको, कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
3: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षी कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचादीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
2: सुनचारीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स, सुनोल बार भुमही, प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल। सम्पर्क 98677 80632, 98075792111 र 98495171979।
4: कारे पुरबहिया, आज कपड़ा बड़ा साफ और चमकदार लगता, कौने सरफ से फिचले हरे?
5: काहे तोके नाई मालूम बका, आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केव गाय छाप सरफे लगावता, जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता, साथ ही कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा, जेमे iPhone 13 उपहार के भी व्यवस्था बा।
6: जी हाँ, आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कइल जा और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जा।
7: उत्पादक साफी सरफ उद्योग, माया देवी गाँव पालिका 1 पाकड़ी कपिल वस्तु। संपर्क नंबर 98264 48200।
8: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा।
9: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। छाती, मुटु, सुगर, थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म।
10: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
11: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमील मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म।
12: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि।
11: र भैरहवा मेडिकल कलेजका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
13: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे, हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर तथा नर्मल अपरेशन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ।
8: सम्पर्क जयसवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक, रामग्राम 5 परासी, फोन 0785207646 र मोबाइल 98470141100 छ।
14: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
15: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
14: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
3: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना, नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
15: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट, रामराम 11 जमुआर, हुलास अटोक्राफको ठिक अगाडि, मोबाइल 98570046130 र 98044000067।
16: अरे जान ले बुका, हस के गोरी, जान ले बुका।
17: रउआ सब सुन रहल बानी रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: कुछ देर व्यवसायिक विश्राम विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में हमन के उपस्थित हो चुकल बानी जा। हमन के फरक दिन फरक विषय वस्तु के साथ में आप लोगों के बीच में हमन के उपस्थित होकर जला। आज के दिन में आपके सबके मन पसंद के गीत सुना जाता और संगति के समझना संपन्न भी करावल जाता। और अभिनवा क्रम में हम सुरेश यादव कार्यक्रम संचालक उपस्थित बानी। तो हमन के सहकर्मी संगतिया बना मन के साथ में हमारे साथ में जो उनकी शंभू चौधरी और प्रावधिन के साथ दे रहा मन के सहकर्मी संगतिया सुरेश यादव जी। अभिनवा क्रम में फिर से हमन के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुकल बानी जब फोन लाइन में संगतिया आ चुकल बना। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते नमस्कार सर।
2: नमस्ते नमस्कार। शमसुद्दीन अंसारी जी के हाल चाल का बा? हमन के भी एकदम ठीक ठाक बाटे नहीं एकदम घाम ते लगे हुए नहीं
1: घाम तो ठीक है
0: चल तो ठीक बा। खान पीन हो गए की बाकी बा?
2: काम में आ गए बढ़िया। काम व्यस्तता के बावजूद ही कोनो माध्यम से जरूर सुनत हो फलजनी हमन के कार्यक्रम गीत बाहर
1: ऑनलाइन से सुनत
2: नहीं। ऑनलाइन से सुनत बानी आपके सहभागिता में कौन गीत सुनी मिल जी?
1: हिंदी में लागू मिली की भोजपुरी मिलेगा?
2: हिंदी भोजपुरी थारू प्यार कथी कहा जैसे
1: प्यार गजब की चीज है
0: जिसे
1: हो जाए बस हो जाए।
0: प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए अपन याद कर सकल जाए।
1: सबसे पहले अपने के समाधि आवेली इनका के सीता जी के दिनों पोजियर की नरकी पार्वती जी के सुना दी आई योगेंद्र जी बिरी जी नौनिकल जी बालेश्वर जी बलिराम जी के सुरेंद्र जी के सुना दी हमारे आवे वाला जितना साथी लोग वाले वो सब साथी लोग को सुना दी
0: आया वाला दिन में सब वही तमिली छुट्टा। नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार।

0: हमारे के गीत के साथ फिर से आप लोगों के शमसुद्दीन अंसारी परसों परसा से सब आए हैं। आपके नाम बता दिया जाता है। बाद ठंडी हल्का फुल्का लगभग लगभग बढ़े लगी। आप लोगों के मन में अभिनवाद करम है हमन के श्रीदेव यादव जी के मन पसंद जो रोटार से फोन कर वहाँ के मन पसंद गीत हमन के बता हमारे के गीत के साथ फिर से आप लोगों के शमसुद्दीन अंसारी परसों परसा से सब आए हैं। आपके नाम बता दिया जाता है। बाद ठंडी हल्का फुल्का लगभग लगभग बढ़े लगी। आप लोगों के मन में अभिनवाद करम है हमन के श्रीदेव यादव जी के मन पसंद जो रोटार से फोन कर वहाँ के मन पसंद गीत हमन के बता भीगी जाने जे भीगी रात में जौन के हमन के जौन की श्रीदेव यादव रोटार से फोन कर अपन पसंद गीत का गलाना इनवा कर हमन के फोन लाइन में कौन संगति आ चुकल माने। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: का बा महेंद्र जी, क्या हाल खबर?
1: सब ठीक हो सर?
0: ठीक बा। का बा दंगे और क्या हाल खबर?
1: सब बढ़िया बा। ये
0: खाना वाना हो गया कार्यक्रम सुन के बैठा रहता। कौन चीज से सुन रहता रेडियो?
1: बरसात हो रही है, बरसात होने दे।
0: बरसात हो रही है, बरसात होने दे। बरसात भी अभी रोज रोज बरसात है भालका।
2: लेकिन बहुत थोड़े थोड़े बरत बने नहीं, लेकिन बरसात बरसात नहीं होता बाटे। चला जाए एकदम कार्यक्रम सुन के साथ देता बानी। आपके दिल से धन्यवाद रही नहीं। एकदम मेला वाला नियर आ गए बाटे, मेला वाला जरूर जाए नहीं बाबा बर्दगोरिया धाम के। चल जा अब की बजे वाला गीत में अपन रोजाई के गीत मार्फत अपन साथी संग रे लोगन के समझे सकल जी।
1: सबसे पहले आपके सर सुरेश करके और बड़का सुरेश करके और बड़ा जानकर या प्रकाश चौधरी जनाब जी चौधरी सुरेश कुमार जी सुनील जी पार्वती जी जिद्दू बानिया सराव सोम कुमारी चौधरी हरकुमान चौधरी चंदर चौधरी कन्हैया यादव केवल चौधरी नील कुमार चौधरी धर्मेंद्र पासवान धर्मदेवा सुनीना कुमारी चौधरी जितना सुन सकते आप उतना सबके सर
0: आज दिन फिर से सहभागिता मिली छूटल दा। नमस्ते। हमन के महेंद्र चौधरी देंगे संध्या कार्यक्रम में सहभागिता जनक अपन मन पसंद गीत का खिलौना अभिनय क्रम में वहाँ के मन पसंद गीत सुना तो करे बाद में कुछ देर व्यवसायिक विश्राम के बाद आप उनके बीच में हमन के फिर से उपस्थित होगा के लिए।

0: मेहनत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
1: हतेरिका हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया रहे आस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
2: भाई देखा तू सबके यही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला
3: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार
4: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी फोन 0785-20146 और 0785-21033 गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो
5: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी कि नवे छावे के लेकिन
4: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा एक बार जाके तो देखी
2: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला
6: संपर्क खातिर
2: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9874-68733 और 9914-60630
7: मैया ए मैया
8: हजुर के भो
7: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
9: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जन द्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरैदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
10: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
11: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर निसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
10: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9903231351
12: ओहो कता हो दाई रन के रे हिन्नु भएको छ नि
3: हेर न भाइ घर बनाउन लागेको सामान जहाँ गयो त्यही महँगो म त दिक्क परे यसो कबाडतिर सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हिँडेको
12: ल कबाडमै कता न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस परासीमा जानुस् न त्यहाँ त कबाड भन्दा पनि सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ
10: हो हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड सिमेन्ट जस्ता पाता एङ्गल पत्ती पाइप एचआर सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
12: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्
10: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेज रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड नापी कार्यालयको ठिक अगाडि सम्पर्क 9845-59960 र 9118-21559
8: के भएको यस्तो नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त
12: इसुमि पहिला त मोबाइल कम चलाऊ दोस्रो आँखा चेक गराइहाला क्या
8: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि
12: त्यस्तो होइन नि अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न
13: हो रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरवा आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन आँखामा मासु पलाएको अपरेसन बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ
6: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
14: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 84 मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 98119069 17 र 98695434254।
15: जयराम जी के हम नरहरी प्रेमी हरदम सुनल रहल जा अपन रेडियो परासी 90.2 MHz।

0: अंतिम व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके बालिन जहाँ आपके अपने दिल के करीब भरे सामुदायिक रेडियो प्राचीन 90.2 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति भोजपुरी भाषा कार्यक्रम गीत बहार जोन के हर एक दिन 11 बजे से 12 बजे तक चलो तारल वाटर आज के दिन में आप सबके मन पसंद गीत भी हमने बताओ बानी जा और साथ में आप लोगों के संगति इनके समझना सब भी कराओ बानी जा फोन कौन संगति आ चुका बना। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्कार। सिकंदर प्रसाद चौधरी जी के हाल चाल का बटे। हम हन के भी बढ़िया ने बाटे का हो जाता बाटे सिकंदर जी।
1: अभी नमस्ते के सर सुनाई हो रहा बा दादा जी कतना कार्यक्रम चला सके के तो करे ठीक बात है भैया के मोबाइल से सारी के लिए हम तो तनी तीन से खराब हो गलो मोबाइल और इधर भैया से वही के नंबर आता में
2: भैया से चलो जा कोनो बात नहीं बाटे कोनो माध्यम से सुन लीजिए कोनो माध्यम से सहभागिता जनाई लीजिए आपके दिल से धन्यवाद रहे नहीं काम धाम चल रहे बाटे नहीं काम धाम चलत बाटे नहीं काम धाम चलत बा खान पीन हो चुकल हो नहीं चल जाए कार्यक्रम में रहिए कौन गीत सुनल जाए
1: फिल्म के नाम है सर कर्मा गाने के बोल बा हर कर्म अपना करेंगे ऐसा नाम तेरे लिए
2: फिल्म के नाम है कर्मा के जन का दिखा गाना वहाँ के नहीं इसे एक दिन फिर से कैसे कर थोड़े से सर्च के लिए हमने का साइन रहे
1: हर कर्म अपना करेंगे ऐसा नाम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐसा नाम तेरे लिए
2: एकदम गीत मार्फत अमन साथी संगरी लोगन के समझे सकल जाए फिल्म के नाम है कर्म ऐसा नाम अमन के प्रादी संगरिया सर्च के लिए में थोड़े से गड़बड़ होता नहीं फिल्म के नाम कर्म लिखा जाए तब वो आज ही नहीं
1: हाँ गनवा बोल वे हर कर्म अपना करेंगे ऐसा नाम तेरे लिए बोलिए
2: है गनवा के चल आपकी जरूर है हर कर्म अपना करेंगे ऐसा नाम
1: तेरे लिए दिल
0: दिया
1: है जान भी देंगे
0: ऐसा नाम चल ठीक आपकी बारी बजा गीत मन पसंद गीत के सुनावे के चाल जाई
1: सबसे पहले आपके छोटका सुरेश के बड़का रेडियो परासी होली उंड के हमारे के लिए बात है लवली के डॉक्टर राय प्रकाश चौधरी जनार्दन चौधरी महेंद्र चौधरी राजू खान पूनम यादव कन्हैया यादव मुन्ना ठाकुर संतोष ठाकुर राधेश्वरी चौधरी लाल माया चौधरी ओम कुमारी चौधरी मीना कुमारी कंवर जमुना कंवर ओम नाथ कंवर मंजू चौधरी मंदा चौधरी जूसू बानिया जोशू बानिया केवल चौधरी सुरेंद्र सहानिया सिकंदर प्रसाद चौधरी कह के जाने पहचान वाला चलना मित्र दोस्त वही विशेष कह के वीरगंज के विनोद पंडिया जी के
0: आज दिन फिर से आपके सहभागिता मेरी छूटल जा नमस्ते
1: नमस्ते नमस्कार सर नमस्कार
0: हमन के सिकंदर प्रसाद चौधरी लंकामक सनतिया कार्यक्रम में फोन कह के अपन मन पसंद गीत जोन करके गेल बना विनोद क्रम में वहाँ के मन पसंद गीत बजाओ जाए तो करे साथ में लास्ट और लकी कलर के रूम में एक दिन से बातचीत करे खातिर आवल जाए आप डायल कर सकते 98 2 10 51 5 से कैसी आपकी खातिर खुला कर गेल बा

0: सिकन्दर प्रसाद चौधरी जुन लङ्का हमरसँग सङ्ग्रह सहभागिता जनैले रहने फोन डायल नै गरे जाने कहाँ कि अब अन्तिम अन्तिम रहेछु गलबाणी जा एकदम विदाई लेहेवाला समय आछु गलबाट नै कार्यक्रममा सहभागिता जनाइलिन् जा ओगर कर दिन आपके दिल से धन्यवाद रहे नहीं अब कैश की घड़ी में 11:56 हो चुका बटे फोन डायल नहीं कर रहे नहीं कार्यक्रम में सहभागिता जनाई लीजिए आपके दिल से धन्यवाद रहे विशेष धन्यवाद रहे नहीं कार्यक्रम सुन के साथ दे लीजिए कोनो भी माध्यम से उनके भी दिल से धन्यवाद देहात प्रदीप संगरिया सुरेश जी के भी धन्यवाद देहात हम कार्यक्रम संचालक शंभू चौधरी और
1: सुरेश यादव भी विदाई खाती लावल चाहत बनी जा नमस्ते जय
0: जय राम जी की।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तीन तीन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: सुनत बाडा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
4: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
5: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
6: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए बात 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।

0: ओम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
1: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
1: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
3: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 98671-45-737।
4: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
5: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी चिनवे छावे के, लेकिन
4: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
6: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला।
7: संपर्क खातिर
6: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 98-74-68-730 और 98-194-60-630।
8: जो कोई को इच्छा सुन्दर घर को लागी सुन्दर रंग।
9: तपाई को घर लाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इंडिगो पेंट्स।
8: इंडिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कंसर्न, कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग, रामग्राम 3 परासी।
9: इंडिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रंग रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
8: इंडिगो पेंट्स, सदा बसन्तम।
10: घरलाई कस्तो रंग सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
7: त्यति मात्रै कहाँ हो र, हामी कहाँ पाइप फिटिङ, प्लम्बिङका सबै सामान, सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
9: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
7: परासीमा घर रंग रोगन, प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्य पाइने एकमात्र स्थान
6: सत्य भगवती ट्रेनिंग कंसर्न, कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग, रामग्राम 3 परासी, पुरानो फिल्म हल को अगाड़ी।
10: प्रोप्राइटर चंद्रमणि चौधरी, संपर्क 0785-20-747 र 98-570-46-747।
11: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
12: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव, हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी, हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
13: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ। साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
11: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906999 र मोबाइल 98570 47282।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तीन तीन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशलटार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: Oh my God, इता फिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगाता फिर पड़क गईल।
4: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
5: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
6: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918510981।
7: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
8: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी कि नवे छावे के, लेकिन
7: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
9: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
10: संपर्क खातिर
9: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 9843768730 और 9814960630।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। सब जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वॉशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
1: सही कहला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वॉशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगाए गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
0: सफेद वॉशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
1: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
3: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौँ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौँ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।
4: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप्प लाइन जान्छ, एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
5: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो। त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता?
6: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
5: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ।
7: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामगराम 5 परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटरको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 98 1 15 64 0 92 र 98 2 38 36 460।
8: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़-मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूँ के मन नहीं करला।
9: हाई देखा, अब लाज कौन बात की हो? चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा।
10: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी। दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निशुल्क इलाज।
8: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 95 59 74 74 00 और 95 59 44 85 36।
2: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
11: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
2: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
12: के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
13: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
12: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पुरा गर्दैछौँ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पीटी र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिसन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्।
13: थप जानकारीका लागि मिसन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी रामग्राम 5 परासी अदालतको ठिक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 98510-38135।
14: हरे कृष्ण
15: जप्दै कता हिँड्नुभयो बुवा?
14: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो। त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
12: हो, अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने, आरसिटी, डेन्टल इम्प्लान्ट, दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
16: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत, मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
7: थप जानकारीका लागि हरेकृष्ण डेन्टल प्राली, रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक, एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा, निर्देशक श्याम कुमार बस्याल, 98510-38135।
17: नमस्ते, म डम्बर नेपाली, सुन्दै गर्नुहोला रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मेसिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
0: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
3: सुनत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
4: हत तेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया रहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
5: भाई देखा तू सबके ही कुल समस्या बातें एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
2: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
0: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785-20146 और 0785-21033।
5: या जैले खाना खाने बेला में झ्याप पलाइन जान्छ एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
6: ठिकै भन्यौ अनि रूममा कुलर पनि त चाहियो त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदै छ नि केको चिन्ता।
7: हजुर जहाँ तपाईँले गिजर हिटर इन्भर्टर आइरन राइस कुकर पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
6: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौ।
8: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर रामग्राम 5 परासी थाना रोड ग्लोबल कम्प्युटर को ठीक अगाडि प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 9815640092 र 9828336460।
9: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर रामग्राम 5 परासी बाईपास रोड हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव। सम्पर्क नम्बर 9857023031।
10: जता दौडिए पनि त्यस्तै यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्यो। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
2: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
9: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
10: हामी कहाँ छड सिमेन्ट गिट्टी बालुवा रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ सेनेटरी प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
9: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली रामग्राम 3 परासी सुनोवल रोड पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 0785208081।
10: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 0785905088।
6: मैया ए मैया।
11: हजुर। हजुर के भो
6: छ नि अब दाँत मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि
10: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण दाँतको एक्सरे दाँत सफा गर्ने टल्काउने किरा लागेको दाँत भरिने दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने
11: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने
12: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर निसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्
8: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि मोबाइल 9893231351
13: बस ट्रक कार होस् वा मोटर बाइक टायर सधैँ सिएटकै
6: हजुर जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स भूमहिमा बलियो टिकाउ अनि बढी माइलेज भएको सिएट टायर इन्भर्टर ब्याट्रीहरू साथै आकर्षक सटिङ सुटिङका लागि पनि एकै ठाउँ
13: जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स सुनवल बार भूमहिलाई सम्झनुहोस् सम्पर्क मोबाइल 9857045155
0: हत तेरी का लास्ट गर्मी लगता यार लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सकाई यही में मोबाइलो फूट गई बा लेकिन
2: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिला था
1: जी हाँ धीरज ट्रेडर्स परासी में हर एक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी फ्रिज कूलर पंखा एसी हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला
4: संपर्क धीरज ट्रेडर्स रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल मोबाइल 9847220 और 9815220
2: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना
5: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ साथै सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण तथा कार जीप ट्रेक्टर ई रिक्सा टेम्पो मोटरसाइकल स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ
2: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम

0: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्यूआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्यूआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।
1: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
2: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव, हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी, हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया, हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण, हरेक शनिबार
3: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी, हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा, हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन, हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे, हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
4: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
1: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक, रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906199 र मोबाइल 98577042।
5: ओ माय गॉड, इते अभिन वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगा था फिर पड़क गई।
6: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
7: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
1: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9118510981।
8: हेलो, हेमलक ट्राभल्स हो?
9: हो हजुर।
8: सुन्नु न, एउटा दुबईको प्लेन टिकट चाहिएको थियो, अनि भैरवाटु काठमाडौँको लागि 2 टिकट पनि
9: भइहाल्छ।
10: हजुर, हेमलक इन्टरनेशनल टुर एन्ड ट्राभल्स भुमैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट, अनलाइन श्रम स्वीकृति, टिकट कन्फर्म, टुर प्याकेज, होटल बुकिङ, भिजा सर्भिस, अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै स्कर्पियो, जीप, कार भाडामा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्।
9: सुन्नुहोस् त, टिकटको मिति सार्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। हेमलक इन्टरनेशनल टुर एन्ड ट्राभल्स, सुनोल 12 भुमई, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला पराजुली, फोन नम्बर 0785104001 र मोबाइल 98570045546।
10: हेमलक, तपाईँको यात्राको विश्वासिलो सारथी।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इ वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।

0: मेहनत बाड़ा हो किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाई लौकत बा लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का
1: तेरी का हमरो समस्या ते इहे बा हो रही रही के आँखिया रहे आँस गिरता अदानी को साफ से नाई फरियाता
2: भाई देखा तू सबके ही कुल समस्या बाते एक बेर विगत लम्बा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
3: जी हाँ हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
4: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785-20146 और 0785-21033।
5: डेंगू रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगू रोगको महामारी धेरै जसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिना साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
6: डेंगु रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा खुला भएको लुगा लगाउने, झुल भित्र सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने गरी जाली लगाउने, घर आँगन र वरपरको सफाई गर्ने, पानी जम्ने भाँडाहरू, टिन, खाली बट्टा, गमला, फुलदानी, टायर आदिमा पानी जम्न नदिने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको दुई पटक फेर्ने, घर वरपर रहेका पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने र ढल, पोखरी लगायत धेरै पानी जमेको ठाउँमा जलेको मोबिल वा मट्टी तेल हाल्ने गर्नु पर्दछ। थप जानकारीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी।
7: ए चाचा देखा न हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो, हमके त एकदम धुधुराह लौकत।
8: ए मर्दवा अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा, आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हमहु एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
9: अच्छा तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा, अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
2: जी हाँ हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मांस उभरल टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
3: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 9867228015 और 9857022015।
10: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
11: सही कहला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
3: जी हाँ चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
10: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
11: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
8: हद तेरी का लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सका, यही में मोबाइलो फूट गई बा। लेकिन
3: का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
12: जी हाँ धीरज ट्रेडर्स परासी में हरेक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में LED TV फ्रिज कूलर पंखा AC हीटर लगाए के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
13: संपर्क धीरज ट्रेडर्स रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 9847222020 और 9815222020।
5: काठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्धको एसपीपी खोप लगाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको जरुरी सूचना। यही भाद्र 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म नवलपरासीमा रहेका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 6 अध्ययनरत छात्राहरूलाई विद्यालयमा र विद्यालय बाहिरका 10 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एसपीपी खोप सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सरकारवालाहरू सबैले खोप अभियानलाई सहयोग गरी यो कार्यक्रम सफल बनाउन अनुरोध गरिन्छ। खोप निशुल्क पाइन्छ, खोप सुरक्षित छ, खोपले जीवन रक्षा गर्दछ। अनुरोधक स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी बर्दगार सुस्ता पश्चिम। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
14: लौ न लौ लौ, चट्याङ पर्ने आटो सबैजना यता आऊ त यता, यो ठुलो रुखको फेदमा बसौँ।
15: हुन्न हुन्न, चट्याङ पर्दा रुखको फेदमा बस्नु हुँदैन, त्यहाँ त झन् जोखिम हुन्छ।
16: हो र?
15: हो नि, चट्याङ पर्दा रुख मुनि र बिजुलीको खम्बा वा अग्लो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, सुक्खा ठाउँ र घरभित्र झ्याल ढोका लगाएर बस्नुपर्छ।
16: अनि चट्याङबाट जोगिन अरू के गर्नुपर्छ?
15: चट्याङ पर्दा वा पर्ने सम्भावना हुँदा टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, माइक्रो ओभन जस्ता विद्युतीय सामग्रीमा जोडेको तारको स्विच बन्द गर्नुपर्छ। यदि विद्युत बन्द गरिएन भने चट्याङ पर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
16: चट्याङ पर्ने जोखिम कुन कुन समयमा बढी हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न।
15: धेरै जसो चट्याङ चैतदेखि जेठ महिनामा र सामान्यतया दिउँसो 3 बजेपछि बढी पर्ने सम्भावना हुनाले यो समयमा सचेत रहनुपर्छ।
17: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।

0: आपके सुख दुख के संगरिया रेडियो 89.2 मेगाहर्ट्ज़
1: प्यार के बंधन इहा प्यार के बंधन काबा साधना झूठी हो
0: आपके सुख दुख के संगरिया रेडियो 89.2 मेगाहर्ट्ज़

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीस के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे ई वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजना हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: अंकल नमस्कार, बहनी ब्याह कर दुबारा का?
1: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में ब्याह हो जाते।
0: नहीं अंकल, पहले जैसा समय अब नहीं रह गए, अब ते 20 वर्ष न पुग के ब्याह करे के और कराए के नहीं मिले। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के पड़ी और उतना भर नहीं, छोटहन उम्र में ब्याह कर दे के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हुई।
1: ऐसा बात बाटे?
2: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
3: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिमाना होखेला। यह नाते अगर ऐसा गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रेणी सामाजिक विकास मंच, UMN, बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।
4: सुनत बाड़ा हो, है टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
5: है देखा, अब लाज कौन बात की हो? चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
3: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
1: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क।
6: जो कोई को इच्छा सुंदर घर को लागी सुंदर रंग,
7: तपाई को घर लाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इंडिगो पेंट्स।
6: इंडिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कंसर्न, कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग, रामग्राम 3 84।
7: इंडिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिन बाट कलर तयार गरिनुका साथै रंग रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री का लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
6: इंडिगो पेंट्स, सदा बसन्तम।
8: घरलाई कस्तो रंग सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
6: त्यति मात्रै कहाँ हो र, हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान, सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
7: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
6: परासीमा घर रंग रोगन, प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्य पाइने एकमात्र स्थान
7: सत्य भगवती ट्रेनिंग कंसर्न, कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग, रामग्राम 3 84, पुरानो फिल्म हल को अगाड़ी।
8: प्रोप्राइटर चंद्रमणि चौधरी, संपर्क 0785207747 र 98570046747।
1: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी,
9: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, USG, ECG तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
1: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
3: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 84, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 98671475737।
10: हरे कृष्ण जप्दै कता हिँड्नु भयो बुवा?
11: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो, त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
6: हो। अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिन द्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने आरसीटी डेन्टल इम्प्लान्ट दाँतमा सिमेन्ट भर्ने दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
3: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
7: थप जानकारीका लागि हरे कृष्ण डेन्टल प्राली रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा। निर्देशक श्याम कुमार बस्याल 98510 38135।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: भोजपुरी हाल खबर,
2: भोजपुरी हाल खबर,
1: अपने गांव घर और आसपास की ताजा घटना की जानकारी के खातिर हर रोज जरूर सुनल जा।
2: भोजपुरी हाल खबर
1: मात्र रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज पे।

नमस्कार। पश्चिम नवलपरासी के पहिला रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज और इन्टरनेट अनलाइन के www.radioparasi.com मार्फत एकैसाथ प्रसारण हो रहल साँझी के 5 बजे के भोजपुरी हाल खबर में हम सुरेश यादव के तरफ से आपके स्वागत बा। हाल खबर शुरू कइल जा खास खास खबर से। एकतीस वर्ष पहले रावल आयोग आगे बढ़ावल अतिक्रमित सब जगह सरकार के नामे कायम करे वाला निर्णय निजी क्षेत्र साथ के सहकार्य के थप प्रभावकारी बनाए वाला प्रधानमंत्री शाह के कहना। भोटे कोसी और त्रिशूली नदी में आयल बाढ़ी से झंड 1.5 लाख नागरिक लोगन प्रत्यक्ष प्रभावित। बाढ़ी प्रभावित महिला और बाल बालिका लोगन के सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क रखे खातिर संसदीय समिति के निर्देशन। सरावल में भारत से भंसार छड़ के लियावल गई 1 करोड़ रुपया से ज्यादा के अवैध सामान बरामद। बरामद सामान आवश्यक कार्रवाई के खातिर महेशपुर भंसार कार्यालय चलान। और भारत में बिहान से शुरू होके वाला ब्रिक्स सम्मेलन में चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सहभागी होके वाला पहला संस्करण के NBL के फाइनल प्रवेश के लिए काठमांडू और कलाड़ी कुछ बेर के बाद खेल रहा। अब सुनल जा पूरा हाल खबर। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय आयोग रावल आयोग के प्रतिवेदन 2052 आगे बढ़ावल सब सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकार के नाम में कायम करे के निर्णय कैले बा। मंत्रालय द्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति के बैठक प्रतिवेदन पेश कैले रहल। उक्त प्रतिवेदन के आधार में मंत्रालय सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसावल कई के उल्लेख भइल किता से घुसल कहल गइल क्षेत्रफल एक मुष्ट रूप में कट्टा कई के नेपाल सरकार के नाम में कायम करे के निर्णय भइल बाटे। ऐसे कई के प्रतिवेदन में पूरा क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जगह में परल कई के उल्लेख भइल किता के एक मुष्ट रूप में निर्णय कई के नेपाल सरकार कायम करे खातिर निर्णय कैले बाटे। नापी प्रमुख अधिकृत रमेश गेमाली के संयोजक रहल समिति में गृह मंत्रालय के उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय और नापी कार्यालय दिल्ली बाजार के प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा के प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग शाखा के अधिकृत सदस्य और नापी विभाग के नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहल बने। प्रधानमंत्री बालन शाह अर्थतंत्र में लौकल चुनौती समाधान करे के खातिर निजी क्षेत्र साथ के सहकार्य के थप प्रभावकारी बनाए वाला बतौले बने। सिंह दरबार में उद्यमी तथा व्यवसाय लोगों के साथ छलफल करत लगानी और व्यवसाय विस्तार के खातिर अनुकूल वातावरण निर्माण करे खातिर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौले बने। ये क्रम में प्रधानमंत्री शाह उद्योग व्यवसाय संचालन के क्रम में निजी क्षेत्र भोग रहल समस्या के बारे में जानकारी लिहल। छलफल में सहभागी रासोपा के सांसद विदुषी राणा जानकारी दिले बने। नेपाल में स्वदेश के व्यवसाय लोगन और ओकर बाद गैर आवासीय नेपाली लगानी करे के परिकहत प्रधानमंत्री शाह 12 विदेशी लगानी तीसरा प्राथमिकता में रहे वाला बतावल सांसद राणा बतौले बने। व्यवसाय लोगन नेपाली व्यवसायी बड़ा पूर्वाधार निर्माण में सक्षम रहल और ओकर खातिर नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक रहल विचार रखले रहने। अर्थतंत्र में निजी क्षेत्र के 80% योगदान रहले से मनोबल उच्च रखे खातिर राज्य अनुकूल वातावरण बनाए के परिमे व्यवसाय लोगन के जोड़ रहल सांसद राणा के कहना बाटे। ऐसे व्यवसाय लोगन आरोप लगल लगते व्यवसाय लोगन के पकड़ाव करे वाला और थूने वाला परिपाटी से मनोबल घटावल शिकायत कैले रहने। निजी क्षेत्र के समस्या, कानून संशोधन और लगानी के वातावरण के बारे में समीक्षा करे खातिर प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रत्येक दिन 3-3 महीना में निजी क्षेत्र के साथ नियमित छलफल करे वाला समझदारी बनल सांसद राणा के कहना बाटे। छलफल में उद्योगी तथा व्यवसायी विनोद चौधरी, पवन गोल्यान, उमेश श्रेष्ठ और चंद्र ढकाल सहभागी रहने। ये बीच अर्थमंत्री डाक्टर सोनी मोहागले बंद तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग संचालन के जिम्मेवारी निजी क्षेत्र के ही दिए कि सरकार के नीति रहल बतौले बने। आज काठमांडू में भइल नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के 28 साधारण सभा में वहाँ सरकार अपने उद्योग चलाए के शुरू कैल कई के निर्माण भइल भाष्य गलत भइल बतौले बने। अर्थ मंत्री वागले सरकारी स्वामित्व के उद्योग के संपत्ति और दायित्व व्यवस्थापन कई के निश्चित प्रक्रिया पूरा कई के निजी क्षेत्र के हस्तांतरण करे के बतौले बने। भोटे कोसी और त्रिशूली नदी में गैल भादो 10 में आयल बाढ़ी से रसुआ, नुआकोट, धादिंग लगात के जिला में झंड 1.5 लाख नागरिक लोगन प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित भइल सरकार के प्रारंभिक आकलन बाटे।
विनाशकारी बाढ़ी से 1.5 लाख नागरिक लोगन प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित बनल और शुरुआती आकलन रहल। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय जनौले बाटे सिंहदरबार में आज बैठल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा तमाम संयंत्र मार्फत संकलित तथ्यांक के आधार में प्रभावित नागरिक लोगन के प्रारंभिक संख्या आकलन कैल जानकारी देले बने। वहाँ प्रभावित क्षेत्र से उद्धार कैके होल्डिंग सेंटर में रखल गई 25 जना में पखाला लौकल बतौले मने। वहाँ के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी और समस्या देखा पड़ल नाई बाटे। सचिव देवकोटा भौगोलिक अवस्था और तापक्रम अनुसार भवन निर्माण के अवधारणा आगे बढ़ाए के परी और मंत्रालय ओकर संबंधी योजना के तैयारी कर रहा उल्लेख कैले मने। पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के खातिर योजना निर्माण हो रहा वहाँ के कहना बा। साथै प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के महिला बाल बालिका तथा अन्य जोखिम में रहल समूह के सुरक्षा के लिए होल्डिंग सेंटर में हेल्प डेस्क के व्यवस्था करे खातिर सरकार के निर्देशन दिएले बाटे। आज बैठक हेल्प डेस्क रखी के संपर्क व्यक्ति तोके खातिर निर्देशन दिएल सभापति आकृति अवस्थी जानकारी दिएले बने। वहाँ विपद के संवेदनशील अवस्था के दुरुपयोग करत रोजगारी राहत घरे वापस पठाए वाला वा सुरक्षित जगह में पुगाए वाला नाम में पीड़ित लोगन के प्रलोभन दबाव और झूठा आश्वासन दिए वाला जोखिम रहल समेत बतौले बने। विशेष कैके रसुआ के बेत्रावती और तिरचोली कॉरिडोर तिमुरे खट्टे खोला स्याप्रू बेसी हाकू बेसी और मैलुंग लगायत के क्षेत्र में होल्डिंग सेंटर में रहल नागरिक लोगन के सुरक्षा संवेदनशील रहल समिति के निष्कर्ष बाटे। समिति महिला किशोरी बाल बालिका अपंगता भइल आदमी और अन्य जोखिम में रहल समूह यौन शोषण लैंगिक हिंसा दुर्व्यवहार मानव बेचबिखन तथा अन्य हिंसा और उत्पीड़न के जोखिम में परे सकीकत सुरक्षा और संरक्षण के प्रभावकारी व्यवस्था करे खातिर निर्देशन समेत दिएले बा। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता सप्तरी के राजबिराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल के मूल गेट के बारे एक महिला शिशु जन्मावल घटना में सरकार आवश्यक छानबीन आगे बढ़ावल जानकारी दिले बाड़ीन। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में आकस्मिक शून्य और विशेष समय में सांसद लोगन उठावल प्रश्न के जवाब दियत मंत्री मेहता उक्त घटना के सरकार गंभीरतापूर्वक लेके आवश्यक छानबीन आगे बढ़ावल बतौले बाड़ीन। घटना के समय में ड्यूटी में रहल अस्पताल के कर्मचारी लोगन के काम काज से हटा के उ लोगन के ऊपर भी छानबीन हो रहल वहाँ जानकारी दिले बाड़ीन। साथ ही घटना के स्थलगत छानबीन के खातिर नेपाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ और एथिकल कमिटी के डाक्टर अजय शाह सहित 5 सदस्यीय टोली राजबिराज पुगल बाटे। टोली के साथ मंत्रालय के तरफ से स्वास्थ्य सेवा विभाग के उपचारात्मक सेवा महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर पवन जंग रायमाझी समेत बाणे। घटना के बारे में मंत्रालय अस्पताल के साथ 24 घंटे स्पष्टीकरण समेत मांगल और अस्पताल स्पष्टीकरण समेत पेश कैल। मंत्री मेहता के कहना बाटे प्रसूति भैले के बाद महतारी और नवजात शिशु के साल नाल सहित पुनः प्रसूति वार्ड में ल्याके आवश्यक स्वास्थ्य सेहार तथा उपचार के लिए अस्पताल में ही बैठे के आग्रह कैल भी मंत्री मेहता सौभाग्य जानकारी करौले बाड़िन। प्रसूति भइले के बाद महतारी और नवजात शिशु सल नाल सहित पुनः प्रसूति वार्ड में अइले के बाद ड्यूटी में रहल स्वास्थ्य कर्मी लोगन नाल कटले के साथे प्रसूति पश्चात आवश्यक स्वास्थ्य सेहार तथा उपचार के खातिर अस्पताल में रहे खातिर अनुरोध कैले पर भी उ लोगन अस्पताल से बाहरे गेल विवरण अस्पताल से प्राप्त भइल मंत्री मेहता के कहना बा। प्रधानमंत्री बालेन शाह 24 सेप्टेम्बर अर्थात कुवार 8 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 81वीं महासभा के संबोधन करे वाला बाटे। परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन के कार्यतालिका के बारे में जानकारी देले बाड़े। महासभा में 81 मुलुक के राष्ट्र प्रमुख और 50 मुलुक के सरकार प्रमुख सहभागी होके वाला जानकारी राष्ट्र संघ से प्राप्त भइल परराष्ट्र सचिव राय के कहना बाटे। प्रधानमंत्री शाह महासभा में अन्य विषय के अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और इसे सृजित प्रकोप से नेपाल बारम्बार सहे के परल जनधन के बड़ा क्षति के बारे में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण कराए वाला कार्यक्रम तय भइल। राय बतौले बने वहाँ नेपाल नगण्य कार्बन उत्सर्जन कैले पर भी बड़ा मात्रा में जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक असर सहे के परल विषय भी विश्व सामु प्रस्तुत होके वाला बाटे। प्रधानमंत्री शाह जलवायु न्याय के लिए विश्व समुदाय के आह्वान करे वाला सचिव राय जानकारी दिएले बने। वहाँ के अनुसार नेपाल प्रकृति मैत्री जीवनशैली 46% से ज्यादा जंगल विशाल हिमालय क्षेत्र वृहत नदी प्रणाली मार्फत विश्व वातावरण संरक्षण और प्रवर्धन में पुगावत आयल योगदान के बारे में भी जानकारी कराए वाला माने। परराष्ट्र सचिव राय के अनुसार महासभा में नेपाल उच्च स्तरीय साइट
इभेन्ट भी आयोजना गरेवालाबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनके कारण हिमालय क्षेत्रमा परल नकारात्मक प्रभाव और यसै सिर्जित विनाशकारी परिणामके बारेमा छलफल गइके विश्व समुदायके ध्यान आकर्षण कैल उक्त कार्यक्रमके मुख्य उद्देश्य रहल। परराष्ट्र मन्त्रालय जनाउलेबाट महासभाके कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल अति कम विकसित मुलुक लोगन भूपरिवेष्टित विकास उन्मुख मुलुक असमलन मुलुक G77 चाइना लगायतकै मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी होकेवाला कार्यक्रमबाट उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आयोजना कैल अन्य उच्च स्तरीय छलफल और साइड इभेन्टकै सम्बोधन गरेवाला और छिमेकी सहित अन्य मुलुकके समकक्ष और राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारी लोगनके साथ भेटवार्ता कार्यक्रम भी रहल। राय बताले भने नेपालमै पछिल्ला समय सूचना प्रविधिकै क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता लगनके आकर्षण बढत गइल बाटे। उद्योग विभागके अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्र विदेशी लगानीके लिए लगानीकर्ता लगनके प्रमुख रोजाइमै परेकै सुरु भइल बाटे। आर्थिक वर्ष 2082-83 विदेशी उद्योगी तथा लगानीकर्ता लगनसे नेपालमै 58 अर्ब रुपैयाँ बराबरकै वैदेशिक लगानीकै प्रतिबद्धता प्राप्त भइल बाटे। यही अवधिमै तमाम क्षेत्रमै सञ्चालन होकेवाला 1116 परियोजनाकी खातिर वैदेशिक लगानीकै प्रतिबद्धता आयल। उद्योग विभाग जनाउले बाटे ओमेसे सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भर 727 परियोजनाबाट जसै नेपालमै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता लगनके रुचि उल्लेख्य रूपमा बढल देखाउलेबाट विभागके अनुसार यही अवधिमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 63, ऊर्जामूलक क्षेत्रमा 4, कृषिमूलक क्षेत्रमा 18, पर्यटन क्षेत्रमा 227, खनिज क्षेत्रमा 4, सेवामूलक क्षेत्रमा 71 र पूर्वाधारमूलक क्षेत्रमा 2 परियोजनाका लिए विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आयलबाट परियोजनाकै सङ्ख्याकै आधारमा देखत गए सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्य क्षेत्रसँग एकदम आगे लोकलबाट नेपालमै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भइन। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा व्यवसायको विस्तार भइर तुलनात्मक रूपमा कम पूर्वाधारसे भी सूचना प्रविधिकै साथ व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेवाला भइलेसे यी क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता लगनके आकर्षण बढल बताओल गइल बाटे। यसै पहिले आर्थिक वर्ष 2081-82 तमाम 842 परियोजनाके खातिर 64 अर्ब रुपियाँ बराबरके विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइल रहल। अघिल्लो आर्थिक वर्षके तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमै लगानी प्रतिबद्धताके कुल रकम कुछ घटले पर भी परियोजनाके संख्या उल्लेख्य रूपमा बढल बाटे। उद्योग विभागके अनुसार नेपालमै राजनीतिक स्थायित्व लगानीके सुरक्षा और सरल नीतिगत व्यवस्थाके कारण विदेशी लगानीकर्ता लोगनके विश्वास बढत गइल बा। लुम्बिनी प्रदेशमै जसपा नेपालभित्रकै आन्तरिक कलहके कारण राजनीतिक सङ्कट और कानुनी जटिलता दुनो लौकलबाट मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य भादो 1 विश्वासकै मत लिएवाला क्रममा पार्टीकै निर्देशन आइमनलेके बाद सुरु भइल विवाद हाल सांसद लोगनके पद गुमेवाला और अदालत तक पुगेवाला अवस्था पुगल बा। मुख्यमन्त्री आचार्य विश्वासकै मत दिएवाला तयारी गरत दाइन जसपा नेपालकै केन्द्रीय महासचिव सुरेन्द्र कुमार झा प्रदेश सरकारमै रहल अपन मन्त्री और सांसद लोगनकै सरकारसे बाहेरकै और विपक्षमै मतदान गरे खातिर निर्देशन दिएले रहलन। लेकिन जसपा संसदीय दल केन्द्रकै निर्देशनकै पीछे पारत विश्वासकै मत दिएवाला निर्णय भइल। संसदीय दलकै नेता एवं मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे केन्द्रकै निर्देशन अहिलेसे पहिलेही दलकै बैठकसे समर्थन कैलेबाट निर्णय हो चुकलेसे अपनै लोगन उहे निर्णयमे अडिग रहल तर्क कैले माने मुख्यमन्त्री आचार्यकै विश्वासकै मत पुगाए खातिर जसपाकै 4 सांसद सन्तोष कुमार पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश कुमार अग्रवाल और हेमा बेलवासे केसीकै मत निर्णायक बनल रहल। सरकारकै पक्षमे 43 मत पुगलेकै बाद ऊ लोगनकै विश्वासकै मत प्राप्त कैले रहलन्। ओकर बाद जसपा पार्टी निर्णय और हुइप उल्लङ्घन कैल कहत जसपा ऊ 4 लोगनके साधारण सदस्य समेत नाइ रहेवाला किसिमसे निष्कासन कैले रहल। यार पार्टीके केन्द्रीय निर्देशन नाइ मानल कहत प्रदेश संसदीय दल अपने खुसी चलेवाला दुसर सांसद अम्बिका काफलेके कारवाहीके लिए सिफारिस समेत कैले बाटे। उहे सिफारिसका आधारमे लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय काफलेके पद रिक्त भइल सूचना प्रकाशित कैले बा। यी कारवाहीसे जसपाकै भित्र थप आक्रोश पैदा सिर्जना भइल बाटे। जसपा प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार यादव काफलेकै कारवाही गरेवाला क्रममा पार्टीकै लेटर प्याड छाप और तत्कालीन सहमहासचिवकै हस्ताक्षर कृत्य कैल गेल गम्भीर आरोप लगाउले बाटे। विवाद व्यक्तिगत कारवाही तक भर सीमित नाइ बाटे। जसपाकै कार्यकर्ता लोगन भी यी विवादमै दुई धारमै लोगल बाटे। एक पक्ष पार्टीकै निर्देशन उल्लङ्घन गरेवाला सांसद पाण्डे सहितकै समूहकै कारवाही होकेकै परि माग रख रहल बाटे और दोसर पक्ष कारवाही गलत भइल कहल फुकुवाकै माग करत आइल बा। नवलप्रासी जिल्ला समिति लगायतकै कुछ निकाय लोगन महन्त ठाकुर पक्षकै आग्रह करत कारवाही फुकुवा करे खातिर दबाव दिएले भने यो बीच प्रदेश अध्यक्ष यादव सन्तोष पाण्डे पक्षकै मानल गइल। प्रदेश कोषाध्यक्ष
बच्चलाल केवटौर सदस्य राधेश्याम लोधके भी पार्टी के हित विपरीत काम कैल कहत कार्यवाही कैले बाटे ऐसन जसपा के भीतर एक दूसरे के कार्यवाही करे वाला और कीर्ति करे वाला आरोप लगाए वाला श्रृंखला से पार्टी के लुम्बिनी प्रदेश संरचना ही भता भुंग बनल बा। पश्चिम नवलप्रासी के सरावल गाँवपालिका साथ भन्सार टोल से 1 करोड़ ज्यादा की अवैध भन्सार सामान बरामद भइल बाटे। जिला प्रहरीकाले नवलप्रासी भारत से अवैध रूप में नेपाल तरफ ल्या रहल मोबाइल पार्ट्स सहित पिकअप गाड़ी नियंत्रण में लिहले बाटे। आज सुबेरे भारत से नेपाल तरफ ल्या रहल LU 329 नंबर के पिकअप गाड़ी नियंत्रण में लिहल गइल बाटे। महेशपुर से खटल गइल प्रहरी टोली और सशस्त्र प्रहरी बल BOP भुजामा से खटल गइल संयुक्त टोली जाँच करे वाला कर्मी गाड़ी में भन्सार छलके ल्यावल गइल तमाम मोबाइल के पार्ट्स मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय के DSP मदन थापा जानकारी दिएले भने बरामद सामान में उज्जर एयरपोर्ट 1765 थान, करियर एयरपोर्ट 633 थान, करियर टेम्पर ग्लास 3800 थान, उज्जर टेम्पर ग्लास 4500 थान और मोबाइल कवर 930 थान रहल बाटे। साथ ही 1 बोरा प्लास्टिक और पिकअप गाड़ी समेत बरामद भइल बाटे। प्रहरी के अनुसार बरामद सामान तथा गाड़ी के अनुमानित मूल्य 1,14,84,000 रुपये बाटे। बरामद सामान सहित पिकअप गाड़ी के आवश्यक कार्रवाई के खातिर महेशपुर भन्सार कार्यालय बुझावल गइल बा। सरावल गाउँपालिका आन्तरिक सुशासन पर्यटन भौतिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई के प्राथमिकता में रखत सम विकास के अवधारणा अनुसार विकास अभियान आगे बढ़ौले बाटे। गाउँपालिका सेवा प्रवाह के पारदर्शी और नागरिक मैत्री बनाए खातिर दैनिक सेवा प्रवाह के अवस्था समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक करत आइल बाटे। गाउँपालिका कार्यपालिका के बैठक के निर्णय सार्वजनिक करे वाला असल अभ्यास के निरन्तरता दियत स्थानीय तह के काम कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता काम करे वाला प्रयास कैले बाटे। स्वास्थ्य तरफ तमाम सूचक के आधार में उत्कृष्टता हासिल करत सरावल गाउँपालिका जिला में दूसरा होखे के सफल भइल बाटे। गाउँपालिका में 15 सय के अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ल और आगामी कुआर के पहला हफ्ता में शिलान्यास करे वाला तैयारी समेत रहल बाटे। पर्यटन प्रवर्धन के समेत गाउँपालिका प्राथमिकता में रखले बाटे। संभावित पर्यटकीय क्षेत्र के पहचान कई के उनकर विकास और प्रवर्धन के खातिर पहल हो रहल गाउँपालिका जनौले बाटे। वार्ड नंबर 1 के रजहमा वन वाटिका, वार्ड नंबर 2 के थारू सांस्कृतिक पार्क और ककरपत्र नगर, वार्ड नंबर 4 के मधे सांस्कृतिक पार्क तथा वार्ड नंबर 5 के धन पोखरा पर्यटन क्षेत्र के नामकरण तथा विकास के खातिर पहल हो रहल बाटे। भौतिक पूर्वाधार तरफ गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्था में और संभवतः चालू आर्थिक वर्ष के भीतर निर्माण संपन्न होके वाला जनावल गेल बाटे। वार्ड नंबर 6 और 7 के वड़ा कार्यालय भवन निर्माण संपन्न होके अपने भवन से सेवा प्रवाह के काम शुरू भइल बा। ऐसे सरावल 3 के स्वास्थ्य चौकी भवन से सेवा प्रवाह के काम शुरू भइल बाटे और वार्ड नंबर 4 और 7 के नया स्वास्थ्य संस्था के भवन से भी चालू आर्थिक वर्ष में ही सेवा प्रवाह शुरू करे वाला तैयारी रहल बाटे। गाउँपालिका खाने पानी तथा सरसफाई के क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ौले बाटे। सरावल के 4 पटनी खाने पानी आयोजना अंतर्गत घर दूरी में 1 घर 1 धारा निर्माण कैल गेल बाटे। धनेवा खोला के करीब 377 मीटर क्षेत्र में सरसफाई तथा बांध मरम्मत कैल गेल बाटे। सब वड़ा में नमूना माटी परीक्षण कार्यक्रम भइल बाटे और कृषि विद्युतीकरण तरफ करीब 3,344 मीटर काम संपन्न भइल गाउँपालिका जनौले बाटे। स्वास्थ्य सेवा के पहुँच विस्तार करे वाला क्रम में डाक्टर विनोद नीता कण्डेल आँखा अस्पताल परासी के सहकार्य में पालिका भीतर के 150 जना के निःशुल्क मोतिया बिंदु के शल्यक्रिया भइल बाटे। साथ ही एकीकृत स्वास्थ्य शिविर संचालन कैले के साथ 275 जना बाल बालिका के बालिका बीमा कैल और 50 जना ग तथा घ वर्ग के अपंगता भइल आदमी लोगन के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भइल बाटे। रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रबंधन के खातिर मेडपा से 17 जना, गाउँपालिका से 18 जना कैके 35 जना नया उद्यमी सिर्जना कैल गेल बाटे। शिक्षा तरफ 10 दिने मन्टेसरी तालिम सञ्चालन भइल बाटे और सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहमें नियमित कार्यक्रम सञ्चालन होत आइल बाटे। वातावरण संरक्षण तरफ गाउँपालिका 10,000 नयाँ पेड़ वृक्षारोपण कैलेके साथै 400 मीटर तार जाली लगा के सार्वजनिक जमीन संरक्षण समेत कैले बाटे। एकर साथे पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य उद्यमशीलता खाने पानी वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन के एक साथ आगे बढ़ावत गाउँपालिका समग्र और संतुलित विकास के आधार तैयार करे वाला प्रयास कर रहल बा।
अब सुन अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारत 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमै जलवायु परिवर्तन विरुद्धकै सहकार्यकै प्राथमिकतामै रखेवालाबाट बिहानसे भारतकै नयाँ दिल्लीमै सुरु होखेवाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमै भारत विकास उन्मुख देशकै प्राथमिकताकै साथ जलवायु कामकै जोडत ग्लोबल साउथकै आवाजकै बलिगर बनाएवाला तयारी कहिलेबाट ब्रिक्सकै अध्यक्ष राष्ट्रकै रूपमै भारत किफायती ऊर्जा जलवायु अनुकूल महत्वपूर्ण खनिज प्रविधि और जलवायु वित्तकै प्राथमिकतामै रखल भारतीय संचार माध्यम लोक जनाउले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विकासशील देशकै राजनीतिक प्रतिबद्धता से व्यवहारिक सहयोग आवश्यक रहल बताउले भने यीबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भी नयाँ दिल्लीमै होकेवाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमै सहभागी होकेवाला तय भइल। चिनिया विदेश मन्त्रालय जनाउले बाट ब्रिक्स उदयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भइल देशबीच आर्थिक राजनीतिक व्यापारिक वित्तीय प्रविधि और बहुपक्षीय सहकार्य बढाएवाला अन्तर सरकारी समूह हो। हाल ब्रिक्समै 11 सदस्य राष्ट्र बने। अन्तमेठो खेल प्रसङ्ग। पहिला संस्करणकै नेपाल भलिबल लिग एनभिएलकै फाइनल प्रवेशकै लिए आज काठमाडौँ रेड्स और कडाली सिउराज बीच खेल हो रहल बाट त्रिपुरेश्वरकै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै कभर हलमै खेल कुछ समयकै बाद साँझी 6 बजे सुरु होकेवाला बाट एनभिएलमै काठमाडौँ कडाली दुनो जितेवाला दाउमै बाँडे। लिग चरणमै 5-5 खेल खेलल दुनो टोली 4 खेलमै जित और 1 खेलमै हार बेहोरले बाँडे। लिग चरणमै काठमाडौँ कडालीकै 3-2 सेटसे पराजित कैले बाटे काठमाडौँ उह नतिजा निरन्तरता दियत फाइनलमै पुगेवाला लक्ष्यमै बाटे और कडाली लिग चरणकै हारकै बदला लियत उपाधि यात्राकै बलिगर बनाएवाला योजनामै बा। आजकै खेल जितेवाला उपाधिकै खातिर बिहान अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सकै साथ प्रतिस्पर्धा गरेवाला माने अङ्क तालिकाकै शीर्ष स्थानमै रहल अन्नपूर्ण कलियाही फाइनलमै पुगल बाटे। नेपालमै पुरुष भलिबलकै फ्रेन्चाइज लिग पहिला बेर आयोजना भइल बा। हाल खबर के अंत में खास खास खबर फिर एक बेर। एकतीस वर्ष पहले रावल आयोग आगे बढ़ाओ अतिक्रमित सब जग्गा सरकार के नामे कायम करे वाला निर्णय निजी क्षेत्र के साथ सहकार्य के थप प्रभावकारी बनाए वाला प्रधानमंत्री बालन शाह के कहना। भोटे घोसी और त्रिशूली नदी में आयल बाढ़ी से झंडे 1.5 लाख नागरिक लोगन प्रत्यक्ष प्रभावित। बाढ़ी प्रभावित महिला तथा बाल बालिका लोगन के सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क रखे खातिर संसदीय समिति के निर्देशन। सरावल में भारत से भंसार छल के लियावल गई 1 करोड़ रुपया ज्यादा के अवैध सामान बरामद। बरामद कल गई सामान आवश्यक कार्रवाई के खातिर महेशपुर भंसार कार्यालय चलान। और भारत में बिहान से शुरू होके वाला ब्रिक्स सम्मेलन में चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भी सहभागी होके वाला पहला संस्करण के एनबीएल के फाइनल प्रवेश के लिए काठमांडू और कर्णाली कुछ बेर में खेल रहा। यही के साथ ही आज के भोजपुरी हाल खबर पूरा भइल। अपन गांव समाज के खबर के लिए सामुदायिक रेडियो परासी सुनत रहल जाई। सुरेश यादव विदा होत बाड़ी। नमस्कार।

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीज के मेला देखे खातिर बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिहे के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन इहे भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परंपरा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चल।
3: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डीजल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर रामग्राम 5 परासी बाईपास रोड हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव। सम्पर्क नम्बर 9857023031।
4: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
5: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
6: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म, र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
7: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
4: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी। संचालक शुभम यादव। फोन 0785906999 र मोबाइल 9857047282।

0: तीज के मेला आयोजना हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागी होके कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
2: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवाले 11 केरवानी। थप जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857 45 860।
0: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जा।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले रातको 9 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।
4: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़ प्रगत

0: सुनल जा आसो भी सब केहू तीस के मेला देखे खातिन बाबा बर्दगोरिया जरूर चले के बा।
1: काहे नाई बाबा बर्दगोरिया सुनवल में भगवान शिव के दर्शन के साथ मेला के भी भरपूर मनोरंजन लिए के बा।
2: महिला लोगन के विशेष त्योहार तीज के अवसर में हरेक वर्ष जैसे इस वर्ष भी ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक स्थल बाबा बर्दगोरिया धाम सुनवल 11 केरवानी में भव्य तीज के मेला आयोजन हो रहा बा।
1: यह नाते आप सब श्रद्धालु भक्तजन लोगन यह भदौ 28 गते अतवार और 29 गते सोमवार के दिन मेला में सहभागियों के कार्यक्रम के शुभ बढ़ावल जा।
0: आयोजक बाबा बर्दगोरिया धाम विकास संस्था सुनवल 11 केरवानी। सब जानकारी के लिए अध्यक्ष नरपति पांडे मोबाइल नंबर 9857745860।
2: धर्म संस्कृति और परम्परा बचाए के खातिर यह भादो 28 और 29 गते बाबा बर्दगोरिया जरूर चलल जाए।